कैसे कहो मेरी नींद नाच रहा है ऐट किया ना मगे हिनाव और कंकराने पा किया ऐट किया ना मगे सन सिल्ला और कंकराने पा किया मगे ऐसे सरहाटे न किया

हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मंगवा रहे कुछ रात रे दिखे रमान धान लेते हैं।